Willing Go festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रूप 12 से प्रति महीना में. शर्तें लागू होने चाहिए. छिटो बनेगा ये Willing Go.

0: जिस मोमेंट तुम्हें लगे मैं तंग कर रहा हूँ मैं चला जाऊंगा।
1: क्या आइटम हो तुम? अब तुम क्या घंटा तंग करोगे मुझे?
2: अब कर सकता हूँ, अब क्लोज आ गए ना। हर्ट तो वही कर सकता है ना जो अपना होता है।
3: हाँ

0: तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

0: नहर।
1: World Inco Festivity Offer अब Poundhouse 1 पर सको 200 Mbps International Net TV साथ में Dual Band Router Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set Top Box मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थरू लागू होने चं छिटो बने गई World Link।
2: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज।

0: नहर।
1: World Inco Festivity Offer अब Pound House 1 वर्ष को 200 Mbps Internet और Net TV साथ में Dual Band Router Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set Top Box मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थरु लागू होने चं छिटो बने गई World Link।
2: ए सुन न हाम्रो घरमा विवाह त नजिकिँदै छ तर टेन्ट मण्डप क्याटरिङ सबै कहाँबाट मिलाउने होला
3: त्यो त एकदम सजिलो छ नि इभेन्ट टेन्ट एन्ड क्याटरिङ सर्भिस बेस्ट इन दमौली गए पुग्छ मण्डपदेखि